क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं न, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।

0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक।
0: ढोलक क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी।
0: शादी? हम भी चलेगा।
1: चलो चलो चलो, हाँ चलेगा।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो।

मैं हूँ दासी, तुम हो राजा, करियर वारे हो महाराजा। यस, सो मेनी ऑफ यू लवर्स ऑफ सरकार साबिर पाक अली रहमान, बिलखुसूस हमारे जनाब हाजी नजीर मालिक साहब एंड नसीमा मालिक। यस नजीर साहब, एंड ऑफ कोर्स आई नो हिज फैमिली, हिज मरहूम मदर एज वेल, दे लव सरकार साबिर पाक अली रहमान। रामदेर के रहने वाले थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह दे मोहब्बा बट सरकार साबिर पाक गोज वेरी वेरी डीप। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्सो लिसनिंग टू आज दिस इवनिंग इज यासीन लतीफ ऑफ पीरामेडसबर्ग, वन ऑफ आवर रेगुलर लिसनर्स, एंड मोहम्मद असद ऑफ रिजर्व हिल्स एज वेल। तो आइए अब पाकपतन की तरफ चलते हैं। एंड आई नो फारूक खान ऑफ द पंचायत ग्रुप एंड महमूद शेख चिश्ती एंड ऑल द मलंगदार, हमारे इमरान मलंग एंड ऑल द मलंग्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। खास आप लोगों के लिए याफरी।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नि बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

डिपोर्टेड आशिक हूँ बट यू माई लव क्या जाने, लंदन से अमरीका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या ना माने।